करमन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रसना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहे गुरु। निर्मल रसना अमृत पीवो सदा सुहेला कर रहे जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सिखे हम बारक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बारक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हन के मैनू पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग। सत संगत च बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरियां होर माड़ियां जितनियां भी आदतां हन संगतां हन ओ आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल।

एक अनक लख बरिया अनथोर नहीं जह जाता। चंचल मत चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अगन कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे।

तो तुम ते लेना, तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता।

कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जन को प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी हा मतलब परवा चरण शरण हम अनाथ नाथ तन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आन के पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी

हम जाएंगे और तुम ते लेना तू मेरा देना जो तू दे सोई सुख सहना जो तू दे सोई सुख सहना हर आपे हुए कृपाल आप ये लाएंगे।

मदिन होत साधु तुरे आवन जानू रे थित पाई जन मरन के मिटे वसूरे गुर नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्धन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ।

वो कहने लगे फोड़ कर दिल के फोड़े। सतम करने या जुल्म करते हैं हर दिल

0: गला खुदकताने को बस आप ही है।
1: दसम पिता दी ए गल सुन के गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह ने अपनी कुर्बानी दिती ते फिर क्या गे ए सारे हिंदुस्तान वास्ते साहबा ने अपनी कुर्बानी दिती। तिलक जंजू राखा प्रवतांका कीनो बड़ो कलू मेसाका ते फिर बड़ा सुंदर करके लिखिया गया है।

करती है। ऐ मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोहतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सै जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सै हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ मैं तेरा सिमरन करांगा तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा सत संगत बह के हर नाम दिया सा तू भूल गया वह दे पै गया हनेरे। ओए सुन मन गाफल पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

होए बिरकत बनारसी रहंदा रामानंद गुसाई अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई ओ स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने क्योंकि रब दे प्यारे रात सौंके नहीं बतांदे ओ ते रात जाग के बतांदे ने गुण गा के।

समा बीते। स्वामी रामानंद एक दिन इशनान करके अपने डेरे आए, ए मूर्ति पूजा नहीं सन करदे। कमरे दा बुआ बंद करके, अखां बंद करके, मन करके अपने ठाकुर नूं इशनान कराया करदे सन। और एक दिन इशनान करारे ने ठाकुर नूं कपड़े पवाए, सिर ते मुकट रखिया। अचानक ख्याल आया मना, सिर ते मुकट पा दिता है, हार पाण दा ते ख्याल ही नहीं रहा। हार छोटा है, मुकट तो पै नहीं सकदा, मुकट लावां तां बेअदबी हुंदी है। जिवें असी किसे दे गल हार पाणा होवे, हार छोटा होवे, पग ला के गल विच हार नहीं पाईदा। इसे तरह स्वामी जी सोची पै गए, हार छोटा है, मुकट तो पै नहीं सकदा, जे हार ना पावां पूजा पूरी नहीं हुंदी। इन्ने नूं कन्नां विच इक आवाज पई, स्वामी जी हार छोटा है। गंढ खोल के हार दी, हार गल विच पा के फिर गंढ बन दे। बिरती खुल गई, स्वामी जी बाहर आए। बुआ खोलिया, बार की देखते नहीं, भगत कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे, ओए तू कौन है जिन्ने मेरे मन की गल जान ली? ते कबीर साहब कहंदे ने, स्वामी जी मैं आप दा सेवक कबीर हां। अमृत वेले गंगा दिया पौड़ियां ते सुता सां, तां तुसी कहा सी उठ राम के राम को। ओदों दा आप दा सेवक बन गया। ते स्वामी रामानंद दियां अखां विच अथरू आ गए। मन पार आया, उन्हां कबीर नूं बाहों फड़ के अपने गल नाल लगा लिया। ते नाले कहंदे ने, ओए कबीर तू हुण सेवक किथे, तू ते मेरे तू भी अगे लंघ गए। जिन्हें मन दी गल जान ली ओ सेवक किथे, और सचमुच राम कबीरे भेद ना पाई। ए अमृत वेले जागण दा फल के कबीर विच ते राम विच, उस वाहिगुरु विच।

खेत वाल जा रहा सी, जाके ठाकर खूह चल रहा थले रख दिता। आके ठाकर जी ए तरलोचन दा कर रही जिथे पानी दी थोड़ है, ए जट्टा खूह है, सब कुछ इथे ही मिलेगा, ताजिया सब्जियां मिल गया, नहाउण दी बड़ी मौज है, वेखो खूह चल रहा है, आप ही हुण इशनान करो ते मैं नका मोड़ा मां मुक्ति गल इशनान कराया। तन्ने ने मल मल के नका मोड़ के आ गया, हुण भगवान बाहर रख दिता है। इतने चिर नूं तन्ने दी करवाली आ गई प्रसादा लैके, बड़े प्यार दे नाल ठाकुर नूं परने उत्ते रख दिता है। रुखा सुखा जोशी एक कृति दे करों आ गया। तन्ने ने अर्ज की, भगवान जो गौ सूई सी उह ते हुण आप जी दे बटांदे विच पंडित जी ने लै ले गए, हुण ते आपां जो कुछ भी करो रुखा सुखा आया है उही खाना है। फिर कोई बात नहीं, दो चार महीने तक दूसरी गऊ सुन वाली है, लहरां वहरां बन जावणगियां, आओ भोग लाओ। हुण उसने पता नहीं सी भोग लाउणा है कि खाना है। काफी समा बहन तो बाद उसने स्त्री नूं आख्या, तुसीं जाओ जी घर नूं, शायद ठाकर दी संगत दे ना होवण।

पत्थर दे विचों हाथ बाहर निकलिया। तने ने आख्या इवें ते गल नहीं बननी, उप ठाकर जी पंडित दे सामने साक्षात बैठ के रोटी खावे ते जट नूं कल हाथ हाथ विखालदा है, इवें ते गल नहीं बननी। हुण भगवान साक्षात रूप विच आके बैठ गए, प्रसाद छकिया। दूसरे दिन का दुपहरा चढ़ चुका है, भगवान तैं मैनूं बहुत भुखा मारिया, देख आपां ने हुण कुछ नहीं करना, देख ला हल चलदा पिया खूह, नक्की तैं मोड़ने ने गाइयां तैं चारनियां ने, जट सौण लगा खूह थले तू तंद छावे। हुण तन्ना देखदा है ठाकर बोलदा नूं हक रहा है, क्यारे मोड़न जा रहा है, गाइयां नूं मोड़ के लिया रहा है। इतनी देर नूं तलोचन भी आ गया, सुनाब तन्या की हाल है, ठीक है पंडित जी तुहाडी कृपा, ठाकर दा की हाल है? पंडित जी जदों दा तुसीं मैनूं ठाकर दित्ता है मेरे घर ते लै रहा बैरा हो गई हन। पंडित आश्चर्य हो गया कि जट भोला है सचमुच दे ठाकर ते मैं अपने कोल लिता के रखे ने, मैं तिस नूं झूठी मूठी दा ठाकर दित्ता सी, जट है ना पता नहीं ठाकर की हुंदा। पंडित जी तुहाडी बड़ी कृपा, धन्ने ने उठ के नमस्कार कीती। पंडित जी देखो ओह ठाकर गाइयां मोड़न गया है, हुण वेखो दूजे कैरे नूं पानी छड़ दिता है। पंडित आखदा है जेठ हाड़ दा महीना है, जट बौंदल गया है तूफान दे नाल। पंडित जी वेखो भूआन तुहाडे नजदीक दी गुजर गए ने, तुहानूं पछाणदे नहीं। तन्ने ने आख्या पंडित सोची पै गया है, तन्या कित्थे है तेरा भगवान, वेखो तुहाडे कोल

थाक दे सौ खाते में सो तुम थाक नहीं दिसदा तनिया मैं उन्हें दिसदा सच आखते हो हां तनिया सच आखदा खाकर जी तुसी मैनू दिसदे हो इसका मतलब तुसी तलोचन भी दिसदे होवोगे नहीं तनिया मैं भैड़िया अखा वाले नहीं दिसदा जिन्हों का मन होर भुख होर हो मैं नहीं उन्होंने दिसदा फिर भगवान जे तू मेरे को रहना है तो फिर तेन तरलोचन दर्शन देने पैणगे तनिया नहीं यह झूठा है फरेबी है मकार है हेरा फेरी करता है मेरे नाम से नहीं प्रभु जे ए ना हुंदा तो मैनू तेरे दीदार नहीं होने हुण हुण भगवान तन्ने के कारण करके तरलोचन नू भी दर्शन देने पे तरलोचन का भी दर्जा भगतां विच आ गया किहदे करके कृति ने संगत की संगत का दर्जा की होया फिर तन्ने ने मंगया कि ऐना कुछ मंगया कोई भी संसारी ऐना कुछ मंग नहीं सकया एक ताजन तुरी चंगेरी करके कहे चंगी जंत ना ले दे मंगी पातशाह घोड़ी वह होवे जिहड़ी किसे कोल होवे बिस्तरा ऐदां दा होवे जिहड़ा बादशाह नूं नसीब ना होवे इस्त्री एडी खूबसूरत होवे जद रोटी लैके

महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता आओ आखिरी शब्द सत श्री अकाल दे जकारे फिर अगले समय विच अगले कीर्तन दीवाना विच जिस तरह भी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे शब्दां विचों बचित्र नाटक है सर्वलोक ग्रंथ है दशम ग्रंथ की बाणी रागां दे गुलदस्ते जां तराने जो भी आप हुक्म करोगे श्रवण करावांगे आओ अज आखरी शब्द समा हो गया है सत श्री अकाल दे जकारे जिनी संगत बैठी है सारिया ने गज वज के चढ़दी कला का जो जकारा साडा प्रतीक है चढ़दी कला का प्रतीक सतगुरां ने सानू दो नारे बख्शिश किए हैं एक नारा आप जी ने श्रवण कर लिया है फतेह का नारा वह किस तरह गजाना है तो दूसरा है सत श्री अकाल का जकारा चढ़दी कला च छड़ना है तो आओ दोबारा कहण की जरूरत ना पवे कि उच्ची आवाज विच गूंज पै जावे तो आओ चढ़दी कला च सत फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण पारा ये शब्द आप जी ने पिछले कीर्तना विच पिछले साल भी कई बार श्रवण किया है तो आओ जोश विच आके आनंद विच आके सारे हाजरी लवाओ इस तों बाद कीर्तन की समाप्ति है बड़े बड़े सुंदर जथे सारी रात कीर्तन दरबार सजना है रैन सबाई है आप जी ने सारी रात हाजरी भरनी है ते ए जागना जागण नीका हर कीर्तन में जागना तो आओ सत्संग जी हाजरी लो।

अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध ग्रह सोहिन चंदन सुगंध

जो जप रहे हैं श्रीवाह हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं कि सुंदर सेज होवे अनेकां सुख किसी भी सुख की कमी ना होवे महल माड़ियां भी सुंदर होन सुगंधियां भी कपड़ियां नूं लगियां होन मन वांछित फल मानदा होवे मन इच्छे सुख मानदा किस नाहे भी सूरे कोई फिक्र फाका ना होवे पर हजूर कहंदे जे परमेश्वर दा नाम नहीं चेते ता ऐसे मनुख नूं समझ लो जिस तरह विष्टा दा कीड़ा किसे कम नहीं आउंदा इसे तरह ही ओ मनुख है सो प्रभ चित ना आवई जे नाम चेते नहीं है ता हजूर कहंदे सो प्रभ चित ना आवई विष्टा के कीड़े कोई बेशक उच्ची कुल दा भी होवे सुंदर भी होवे चतुर भी होवे बड़िया ज्ञान दिया बातां भी करता होवे जे मन करके गुरु चरणा दी प्रीति नहीं ता हजूर कहंदे न ओ ता एक मरे हुए पशु दे समान है क्योंकि दरगाह विच ता अगे करनी कीरत वाची है तेरे मन विच कितना को गुरु दा प्यार है कितना को सत्कार है अगे ता ए वाचिया जाना है कोई चार अखर घट पढ़ लवे कोई वध पढ़ लवे पर अगे ए नहीं पुछा जाना भाई तू कितनी को पढ़ाई कीती है कितनी को माया कठी कीती है अगे ता भाई करनी कीरत वाची है की करनी कमाई कीती 24 घंटिया विचू कितना कुछ समा तू परमेश्वर दी बंदगी विच मन करके बतीत कीता है मामूली दुकानदार नूं वेखिए सवेर तो शाम तक हिसाब ला लैंदा है अज की कमाया है की गवाया है मनुख दे 24,000 स्वास बिना जपन तो रोज दे व्यर्थ जा रहे हैं इसने कदी ख्याल नहीं किया ए चेता कराउंदे हैं जपन वाले ए चेता कराउंदे हैं महापुरख ते जिन्हां ने उन्हां दे बचनां नूं पल्ले बन लिया फिर लोक सुखी पर लोक सुहेले कबीर जी ने वेखिया एक सेठ बैठा है दुकान ते बड़े नौकर चाकर हुक्म दी उड़ीक विच खड़ोते हैं मन च सोचिया भाई इस नूं कदी सत संगत विच नहीं वेखिया ते होवे ना ता इस नूं बेनती करिए भाई सत संगत विच आया करो कबीर जी जा खड़ोते ते फिर ए बड़े हंकार नाल कहन लगा नौकर नूं भाई दियो कुछ ते तोरो इस नूं क्योंकि हजूर कहंदे ना माया तारी अन्ना बोला गुर शब्द ना सुने बो रोल कचोला आपस को दीर्घ कर जाने और उनको लग मात आप तो उत्ते किसे नूं समझदा ही नहीं कबीर जी जा खड़ोते ए भिखारी समझ के अपने नौकरां नूं कह रहे है भाई कुछ इस नूं दियो ते तोरो कबीर जी कहन लगे सेठ जी मैं मंगता नहीं मैं कुछ मंगन लई नहीं आया आख्या जे तू मंगता नहीं तां व्यापारी है आख्या मैं व्यापारी भी नहीं जिस वस्तु दे तुसी वणज करन वाले हो उसका मैं व्यापारी भी नहीं हां ते आख्या फिर तू कौन है की चाहुंदा है ता कबीर जी कहन लगे सेठ जी मैं एक सच दी गल तुहाडे कन्नां विच पाण आया हां ओ ए है कि सत संगत विच आया करो दुनिया दे सुख ए सदा रह नहीं जाने ए मनुच्छा जन्म ही नहीं रह जाना जे सुख रह जाणगे तां तुसी कितना कुछ चिर रह जाओगे आखिर जाना पवेगा अबल ते ए सुख किसे कोल रहे नहीं ते जे सुख रह भी गए तां मनुख उठ जांदा है।

तो संस्कार मिल के पढ़िए और जतन करिए जो गुरु ने सानु पूर्ने पा के दसे हैं किड़ा प्यार कीता है गुरु ने साडे नाल असी भी जतन करिए उन्हों प्यार करने उच्चारण करो श्री भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरसिख का गुरसिख नाल कितना प्यार होना चाहिए किवें दस्या आख्या सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदी एक बड़ा सुंदर सवाल है सिर उच्चा है सब तो नीवे पैर हन भाई साहब कहिंदे ने फिर पैरां वाल सिर क्यों जांदे उन्हां कदमां दी की खूबी की है सारिया पैरां ते तां नहीं सिर झुक जांदा उच्चारण करो श्री सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे मूह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे ये सारे चिन्ह उपर हन मूह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे हजूर कहिंदे हन सब चिन्ह छड पूजियन कदमां दी पूजा क्यों होंदी है वो कौन कर्म कमांदे वह कदम केड़ा कर्म करते हैं जिन्हों कदम से बदो बदी सिर झुक जाता है उच्चारण करो श्री अगलिया टुक भाई साहब जवाब दे रहे हैं आप कहते हैं भाई वह कदम तनता दे योग हैं गुर सरणी साध संगति ने चल चल जाते गुरु के सिख के कदम सत संगत वाल जान चंगे देते हैं अमृत वेले उठ के गुरु का सिख इशनान करता है ते फिर मुख तो जप रहा है श्री किधर चले हो जी मैं गुरुद्वारे चले किदी सोहनी सुगंधी है कितनी सोहनी शोभ है क्योंकि पहली पौड़ी ही गुरसिखी की अमृत वेले जागना है धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आकीदी पौजल बनी हुई सी दस लख दा फेरा सी इतिहास विच पढ़ो जदों आनंदपुर साहब दा किला छड्या ते एडे वड्डे पौजल विच भी उन्होंने अमृत वेला बिना कीर्तन दे नहीं बिताया जदों अमृत वेले दा समा होया भाई दया सिंह साडा अमल टुट गया गरीब नवाज समझ नहीं आई आख्या आशा दी वार दे कीर्तन दा समा जा रहा है ते उथे भी बह के आशा दी वार दा कीर्तन होया हुण असी अपने अंदर चाती पाईए कोई केड़ा सुख है जो वाहिगुरु ने सानू नहीं दिता ते फिर इने सुख प्राप्त करके भी असी उहदा शुकराना नहीं करते उन्होंने तो सानू पूरने पा के दसे हन कि इतने पौजल विच भी गुरु के सिख ने अपना नितनेम त्यागना नहीं ते असी एडिया सुखां विच रह के भी जे उहदा शुकराना नहीं करदे तां फिर सिख कदे होए उच्चारण करो श्री भाई इसलिए आओ भाई भाई साहब गुरदास जी पूरने पा रहे हैं कि अमृत वेले उठ के इशनान करके जो गुरु के दरबार जांदे हन भाई गुरदास जी कहिंदे हन उन्हां नूं कह दिओ जिहड़े जोड़े उन्हां पहने हन उह उतार देण पता नहीं किस चमड़े दे हन आ मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बनवा के उन्हां नूं पहना दे उच्चारण करो श्री भाई गुर शरणी साध संगति नित चल चल जांदे वतन पर पुकार कर पार वसांदे मेरी खलों मोजड़े।

ये सब मतलब के झगड़े हैं। ब्राह्मण को गरूरे कौम ने इतना डुबोया है कि मैं वड्डा वा, उसकी जनीयत पे उसका मुकद्दर रोया है। हुकूमत के तशद्दुद का जमाना खत्म करना है, हकीकत कह रही है ये अफसाना खत्म करना है। उठो, शहादत के लिए उन सरफरोशों की जरूरत है कि जिनके खून की एक बूंद में

फिर हिम्मत आई, फिर डिसिप्लिन आया, फिर सैबी आई, अमृत दी दात बख्शी गरीब नवाज पातशाह ने, ते फिर भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, गुरु कृपा ने जातां दा मौका दित्तियां। ध्यान दिओ जे, ध्यान दिओ जे, एक जट लिया, एक खत्री लिया, एक चीवर लिया, एक चीम्बा लिया, एक नाई लिया, ते सारयां नूं इको बाटे विच पलाया ते आखिया ओ खालसा।

तन ते छिटकी अपनी धारी प्रभ की आग्या लगी प्यारी जो किस करे सो मन मेरे मीठा ता अचरज नैनो डीठा। जदों ऐसी दशा सी ना एक महापुरुष कहिंदे उदों अकाल पुरख ने दर्शन दिते महाराज ने कहिंदे गोबिंद सिंह बेटा क्योंकि आप मैं अपना सुत तोहे निवाजा पुत्र बना के जो भेजा सी जी कहिंदे बेटा गोबिंद सिंह तू इम्तिहाना विचों पास हो गया है प्यार ना आखो सतनाम सिंह मैं प्रसन्न हां मैं खुश हां ते कुछ मंग लै आनंदपुर चाहिए ना जी पुत्र चाहिए कुछ नहीं चाहिए ते की चाहिए ते साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अकाल पुरख नूं कहिंदे ने जे त्रुठे हो मेरां दे घर विच आए हो जे बख्शां दे घर विच आए हो ना तां ए चीज दिओ जी

पीजे बार बैठे हैं सुन, ना पीजे रूपी माली रंग, ना पीजे तीर्थ पविए नंग, ना पीजे पेड़ मरे पिड़ सूर, कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच, रब नहीं पीजदा। ना पीजे केते होवे तूड़, कोई अपने आप नू तूड़ भी बना ले, पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन, लेखा लिखिए मन के पाए, जे तेरा मन ही नहीं होया